0: मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्य, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2000 वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रिय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबंगस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेष् भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 वर्षस्य आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केन्द्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली

0: रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोक को बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघाको 103 मेगाहर्ज अनि मोबाइल एप न्यूज अन एआईआरमा पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता स्टुडियोको घड़ीमा समय बिहानको 7:05 भइसकेको छ। सधैँझै हामी उपस्थित भइसकेका छौं पुराना सदाबहार गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज लिएर। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिसको प्रतीक्षा साँचेर बस्नुभएका सम्पूर्ण तमाम श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत साथै सांगीतिक अभिवादन जनाउँदै पहिलो गीत सुनाउन लागिरहेका छौं। चलचित्र दामादबाट गायक कलाकार मोहम्मद रफी अनि आशा भोसलेको आवाजमा सन् 1978 सालमा दर्शक सामु आएको चलचित्र दामादका निर्देशक रजत रसिक रहेका छन् भने निर्माता आनन्द भोसले रहेका छन्। संगीत निर्देशक हेमन्त भोसले रहेका छन्। अवस्थ श्रोता अब प्रस्तुत छ कार्यक्रमको पहिलो कोसेली।

0: गरेका छन्। त श्रोता स्वीकार्नुहोस् यस कार्यक्रमको दोस्रो कोसेली।
1: पहले आँख लड़ाइए फिर आगे बढ़ जाइए, बढ़कर हाथ मिलाइए अपना नाम बताइए, पहलू में जम जाइए फिर भी

बस पहली ही पहचान में ले जाओ रेस्टोरान में, फरमाइश कर दो डांस की, ये सीढ़ी है रोमांस की, फिर हाले दिल कह दीजिए, कुछ शर्म ना इसमें कीजिए। अगर वो रूठ जाएगी तो क्या वो शोर मचाएगी, अगर वो रूठ जाएगी तो क्या वो शोर मचाएगी। नो नो नो नो

की अब धरती है रुसवाई से, फिर भागेगी तन्हाई से, पकड़ेगी पल्ला इश्क का, जालिम है हल्ला इश्क का। जो इसमें फिल्म में आएगी तो क्या वो बच के जाएगी, जो इसमें फिल्म में आएगी तो क्या वो बच के जाएगी। नो नो, नो।

अंतर्राष्ट्रीय बजार में बढ़दो पहुंच का कारण आगामी पांच वर्ष में भारत को औषधि उद्योग दोब्बर होने अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। हिज नया दिल्ली में औषधि क्षेत्र संबंधी विश्वव्यापी राजदूतर को बैठक संबोधन करते श्री गोयल ने भन्नुभयो भारत ने हाल का वर्ष नौ स्वतंत्र व्यापार समझौता में हस्ताक्षर गरेको छ र अब 50 भन्दा बढ़ी देश

0: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो विविध जानकारी तथा मनोरञ्जनले भरिएको कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। प्रिय श्रोता, समय यस बेला बिहानको 8 बजिसकेको रहेछ। अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट क्रमै।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग

0: शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी, आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
3: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है।

0: हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1 लाख के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का

0: चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर, बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments tracking and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Doki in Meghalaya and Srimantpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: The 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under India's BRICS presidency this year. Details from our correspondent.
4: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China,

0: अपने उज्जवल भविष्य को दे नई दिशा सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ। उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD कार्यक्रम के लिए अभी आवेदन करें। अनुभवी प्राध्यापक, आधुनिक सुविधाएं और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण सब एक ही परिसर में। UG और PG प्रवेश हेतु CUET अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 मई से 10 जून 2026 तक। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए www.cus.ac.in पर जाएं।
1: आकाशवाणी गान्तोकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ताजी तराने अन्तर्गत नयाँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। श्रोता स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको अघिल्लो प्रस्तुति चलचित्र सत्यमेव जयतेबाट कलाकार नेहा कक्करको स्वरमा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 10:31 और 13 सेकंड हो चुके हैं और ये वही सफर है जिसमें आप हमें अपने पसंद के गीत भेजते हैं और हमें कोशिश रहती है कि हम उन्हें आप तक पहुंचाएं। तो कहां पर भेजनी है अपनी फरमाइश हमें पहले ये बता दूं, 9868867533 ये वो जादुई व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें लिख सकते हैं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं अपने नाम और शहर के नाम के साथ। नंबर फिर से बता दूं, 9868867533। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। सिर्फ एक ही काम कीजिए, वही काफी है, बार बार मैं आपसे कहती हूँ, या तो व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल करिए, काफी है। क्योंकि दोनों जगह पर अगर सेम नाम सेम मैसेजेस दिखाई देंगे तो फिर मैं बार बार एक ही नाम में घूम कर रह जाऊंगी, खोकर रह जाऊंगी और बाकी सबके नामों को शामिल नहीं कर पाऊंगी। और आपका नाम ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मैं दोबारा नहीं लूंगी चाहे आप 10 मैसेजेस भी कर दें। तो इसलिए बेटर है कि आप सिर्फ एक ही मैसेज करें, काफी है। और फिलहाल कुछ मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं तो इन्हें शामिल कर लेते हैं। हमें किस किस ने लिखा है चलिए देखते हैं। बिहार स्टेट बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा नाज अंसारी ने हमें मैसेज भेजा है। इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बीबी अंसारी और डब्ल्यू अंसारी ने हमें मैसेज किया। और हमारे पास विजय नारंग नन्हे पहलवान का बाजार सीताराम दिल्ली से, उग्रसेन यादव शकुंतला यादव गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, ये मैसेज हमें भेजा है। भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने, और सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजानिया ने, सिरसा हरियाणा से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने महाराष्ट्र नांदेड़ से हमें लिखा है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और ये लिखते हैं हमें मजनू का टीला से, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का मैसेज, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने नेपानगर मध्य प्रदेश से, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना का मैसेज, और नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनब और यशव का मैसेज हमें मारहरा दरवाजा एटा से, सिकंदरा राव से मुनीम मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन का मैसेज, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक का झज्जर हरियाणा से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम अदीब का हमें सहारनपुर से, गांव कुम्हारहेड़ा से मैसेज पहुंचा, मल्ली मारान से नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान भारती का हमें मैसेज मिला सुफियान के साथ, और संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन सरतना मेरठ से लिखते हैं, आदि जैन, अंश और भव्य के साथ। और

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का मैसेज, बिहार दोबारा से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, रजान अबान और पूरे अब्बासी परिवार का मैसेज, अपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से अरविंद कुमार, गुड़िया, भाव्या, निवेश और नियति का मैसेज हमें मिला है, कहां से ये तो नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, पल्लीला अंसारी, असमनाज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान का पुराना तालाब टमराव से मैसेज हमें पहुंचा और ये मैसेज हमें लिखा है लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमा राज ने जेल रोड दिल्ली से, और अहमदाबाद से हमें परवीन अंसारी, हेमा जाटव, प्रमिला और प्रवीण कुमार वर्मा का मैसेज मिला, और ये है मोहम्मद शफी अंसारी, सोनम अस्मा का मैसेज, बिहार स्टेट डुमराव से, राजकोट से अजिता पॉल और प्रमिला पॉल का मैसेज, श्रोता रघुवीर नगर से लिख रहे हैं हमें दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा का भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज, और डॉक्टर सोनम, सना और डॉक्टर अदीबा का चमन पार्क दिल्ली से मैसेज, रोशन जहां, मन्ना जहां, इशरत खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव शमोरिया का मैसेज हमें मिला है और जेल रोड जालंधर से भी इनमें से कुछ लोग लिख रहे हैं। इसके अलावा हमें बीबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू और चंद्र इंदिरा विहार दिल्ली से लिख रहे हैं। चंद्रनगर से आशु खान और निशु आयशा खान का मैसेज, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम का मैसेज, फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण का मैसेज भी हमें पहुंचा और हमें लिखा है राजेंद्र सिंह ओबराय पिंटू दीवाना ने पंखा रोड जनकपुरी से, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता कल्पना ताई लोखंडे का हमें मैसेज पहुंचा महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ, और ये मैसेज दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेरठ से शोभापुर गांव से हमें लिखा, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रीतेश पूरे संघई परिवार का मैसेज, बिट्टू भाटिया, रीटा और रजत भाटिया मयंक के साथ हमें झज्जर हरियाणा से लिख रहे हैं, सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर का डबकी रोड अकोला से, और हमें मिला है ये मैसेज कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा का मैसेज, साथ ही मुकेश बंसल, अंकित, भावना, अवनी मित्तल, सौरभ वंदना वंश और विहान गुप्ता का साहिबाबाद से, और सुरेश सोनू, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, बलवीर सिंह और मोहिनी ऋतिक का मैसेज हमें दुलापुर उत्तर प्रदेश से मिला है, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और जयराम खोरवाल का उत्तम नगर से मैसेज दीपांशु खोरवाल के साथ, और प्रवीण माली, मीना माली का बड़वाह कंवर कॉलोनी खरगोन एमपी से, और सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कनवासरा, विक्रम कनवासरा, गांव कलाना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ राजस्थान से लिख रहे हैं, सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हिरमन, राहुल नगर अमरावती से लिख रहे हैं, और ओम प्रकाश दिगचंदानी ने ग्रेटर कैलाश दिल्ली से लिखा है, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का जमशेदपुर से मैसेज, गुरमीत सिंह मीता ने साउथ एक्सटेंशन से, दीपक ज्योति और सक्षम शाखे का जिला एटा उत्तर प्रदेश से, विकासपुरी से एसके खन्ना ने हमें लिखा, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से और प्रकाश गोगिया ने भी दिल्ली से, बाकी बहुत सारे मैसेजेस हमें पहुंच रहे हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश शक्ताप का मैसेज, साथ ही मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका का मैसेज राजस्थान से श्रीगंगानगर से, और सपना बोकोलिया, रुद्राक्ष बोकोलिया और ज्वालापुरी नांगलोई से हमें लिख रहे हैं, पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस हमें पहुंचे हैं उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का दिल्ली से, क्या करें बहुत सारे मैसेजेस हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं किसके मैसेज शामिल करूं और किसके नहीं करूं। वेल, अभी जो मैं गीत शामिल करने जा रही हूं उसकी फरमाइश हमें भेजी है बिहार स्टेट डुमराव से मोहम्मद शफी अंसारी, सोनम वली, असमा वली और

राजकोट अजिता राजकोट से अजिता पॉल और प्रमिला पॉल ने, और इसके अलावा हमारे पास इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, ईश्वर जहां, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव चमुरिया ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फकीरा फिल्म से, आवाज लता जी की।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये सफर है दिल का मेल बॉक्स का, जिसमें आप हमें भेज रहे हैं अपनी फरमाइशें। 10:48:25 हो चुके हैं, जल्दी से नाम शामिल कर लूं किस किसने हमें लिखे हैं मैसेजेस। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा ने भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और पिलाईगढ़ से हमें लिखा है रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन ने, और इसके साथ साथ अनिता मुखी, सुदर्शन मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से मैसेज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबू डबू का मैसेज, और ये हमें लिखा है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मैसेज, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिटा बजाज का मैसेज, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, संगीता कंवर, दातार सिंह शेखावत राजस्थान सीकर से हमें लिख रहे हैं, और भवानीगढ़ से हमें राजेंद्र कुमार सचदेवा ने मैसेज भेजा, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा का मैसेज।

गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशव रिधान का मैसेज, और इसके साथ साथ अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मोहिरकर, पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, वीएस नाहवकर ने हमें नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से लिखा है। इंदिरा नगर भवपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन का मैसेज, और राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी और पुष्पेंद्र कुमार दूदी का गांव फ्रांसी हिसार से, और इसके साथ साथ हमें गांधी चौक बाड़मेर राज से लिखा है पब्लेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने, रामदेवरा से दिनेश चौहान ने, डागरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, और साथ ही ये मैसेज हमें लिखा है विपिन नेहरा ने, कहां से नहीं पता, और ये साथ में हमारे पास प्रकाशन शर्मा बाजार सीताराम दिल्ली से हमें मैसेज भेज रहे हैं, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान का मैसेज राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से, और ये है मैसेज किसका, मोहम्मद कैफ बाल और बांगरा सिवान बिहार से हमें लिख रहे हैं अकबर हुसैन के साथ, और ये मैसेज आसिफ सैफी का मेरठ से हमें लिखा है डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सुधाकर राजे, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वत प्रणाली, सानवी और कल्पनानी जाफराबाद से, और साथ में भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पुरुष का मैसेज व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, सतप्रकाश गोयल का गोयल के साथ रोहिणी दिल्ली से, रवि लता प्रिया वीनू का भिलाई छत्तीसगढ़ से, विवेक वर्धन ने डॉक्टर पारुल सिंह के साथ मेरठ से लिखा है, देहरादून से आलोक पवार और मिनी का मैसेज हमें मिला है, और श्रीपाल गोयल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखा है, अशोक कुमार विद्यार्थी ने मयूर विहार दिल्ली से लिखा है, और संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत भारत का मैसेज हमें मिला है, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से लिख रहे हैं ये, और साथ साथ हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा नुखान, अदनान और फैजान खान का मैसेज गंज टुंडवाड़ा से हमारे पास पहुंचा है, और इसके साथ बहुत सारे रिपीट मैसेजेस तो हमें लगातार मिल ही रहे हैं, स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, शुभदीप का मैसेज जिला फिरोजपुर से हमें मिला, और हमें लिखा है उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सुनीत कुमार ने खयाला से, और साथ ही ये मैसेज फिर से रिपीट, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम उस गीत को शामिल करते हैं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है किसने, देखे जरा, हाथ की सफाई फिल्म से ये गीत सुनना चाहा है फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने, ये रहा आपकी पसंद का गीत।

और अब वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों, तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते आपको एक और गीत सुना दूं। और इसकी पसंद हमें किसने भेजी है फरमाइश? जॉन डिकैस्ट्रो, रोसी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। ये रहा आपकी पसंद का गीत। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के ठीक उस पार मैं फिर से मिलूंगी लेकर तस्वीर 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

तो कहिए हमारे घुमक्कर दोस्त तैयार हैं आज के सफर पे हमारे साथ चलने को? मुझे पता है कि बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे ही तस्वीर का वक्त होता है, जैसे ही ये सफर का वक्त होता है, आप सब अपने अपने कानों को करीब ले आते हैं एफएम गोल्ड के, क्योंकि घर बैठे आपको खूबसूरत जगहों की सैर करने का मौका मिलता है तो सिर्फ एफएम गोल्ड के जरिए। तो चलिए आज आपको इससे पहले कि ये बताऊं कि हम कहां चल रहे हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं, बता दूं कि 11:11:38 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। फिलहाल तस्वीर के सफर में आज हम आपको कहां ले चल रहे हैं जल्दी से बता दूं। हिमालय में कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ देती हैं, और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ठीक ऊपर स्थित कुफरी उन्हीं में से एक है। शिमला कभी कभी थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाता है जब सीजन होता है या ऐसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, स्वाभाविक रूप से काफी भरा हुआ लगता है। वहीं कुफरी की बात करें तो ये बिल्कुल अलग महसूस होता है। शिमला का अपना अलग आकर्षण है, लेकिन कुफरी जो शिमला से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है, ताजगी और सुकून का एहसास कराता है। खुले नजारे, शांति और प्रकृति के करीब होने का एहसास कुफरी की यही खासियत है। यहां अक्सर होटल से ही, यानी जहां आप रुकते हैं उसकी खिड़कियों से ही आपको मनमोहक नजारे देखने का आसान मौका मिल सकता है। शिमला में घनी आबादी वाले निर्माण की वजह से ये नजारे अब थोड़े से दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन अगर कुफरी की बात करें तो कुफरी में काफी खूबसूरत नजारे आपको आसानी से मिल जाते हैं। कुफरी शांत, खुला और हिमालय के उस स्पर्श के करीब लगता है जिसे शहरों की भीड़भाड़ से परेशान लोग असल में अनुभव करना चाहते हैं या शहरों में अनुभव नहीं कर पाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास स्थित एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपनी बर्फबारी और एडवेंचर के लिए जाना जाता है। स्थानीय भाषा पहाड़ी में कुफरी शब्द कुफर से बना है जिसका अर्थ है झील। जी हाँ, तो चलिए आज कुफरी की सैर पर आपको ले चलेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में, क्योंकि आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस तस्वीर उकेरेगी आज आपकी आंखों में घर बैठे कुफरी की। तो इससे पहले कि इस सफर में आगे बढ़े, एक गीत सुनते हैं, इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत गीत को, और फिर सफर में आगे बढ़ेंगे झूमते गाते।

तो भाई कुफरी की सैर पर निकले हैं आज आप और हम। कुफरी जो है वो शिमला के बहुत करीब है, मतलब शिमला तो हर कोई घूमने जाता है, लेकिन वहां क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा फेमस हिल स्टेशन है वो, और ज्यादातर हर वक्त वहां पर लोगों का आना जाना ताता लगा रहता है। कुफरी शिमला से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। कुफरी शिमला और चैल के बीच एक बहुत ही संतुलित जगह है, एक आदर्श संतुलन है यहां का। ना तो बहुत भीड़ भाड़ है और ना ही ये जगह बहुत शांत है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना, हवा में चीड़ की ताजी खुशबू और दूर बर्फ से ढकी चोटियों की वो पहली झलक जो बहुत ही रोमांचक लगती है। चाहे आप अनुभवी यात्री हों या पहली बार पहाड़ों की सैर कर रहे हों, कुफरी आपको लुभावने नजारे, रोमांच और हिमालय के अद्भुत जादू से भर देगा। और समुद्र तल से लगभग 2322 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहां साल भर मौसम सुहाना रहता है। कुफरी में हिमालयी दृश्य, नजारे, बर्फ से जुड़ी गतिविधियां और परिवार के साथ मौज मस्ती करना सचमुच ही सभी कुछ बहुत ही खास है। और अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में बर्फ के खेल और स्कीइंग, गर्मी के मौसम में शांत हरी भरी घाटियां, कुफरी फन वर्ल्ड जैसे पारिवारिक मनोरंजन क्षेत्र, कुफरी चिड़ियाघर में तेंदुआ और भालू सहित कई वन्य जीवों को देखने का मौका, और नेचर पार्क में पाए जाने वाले जंगली हिमालयी वनस्पति और जीव जंतु, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित हिमालय पर्वतमाला के मनोरम नजारे, बहुत कुछ है जो कुफरी में आपको देखने को मिल सकता है। कई यात्रियों के लिए कुफरी शिमला के पास बर्फ की राजधानी है, जो सर्दियों में हल्के फुल्के मनोरंजन से लेकर रोमांचक पहाड़ी ट्रैकिंग तक सब कुछ देती है। तो अगर आप यहां जाने का अब तक प्लान नहीं बना पाए हैं तो जरूर एक बार यहां जाकर देखिए। कुफरी आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगा। कुफरी घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है ये भी बता दूं, अगर आप गर्मियों में जाते हैं जो कि अप्रैल से जून का महीना है, तो मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से बचने के लिए ग्रीष्म ऋतु सबसे बेस्ट है। यहां पर आप इस मौसम में भी जा सकते हैं। कुफरी में इन महीनों के दौरान मौसम सुहाना आरामदायक रहता है, जो इसे देखने लायक स्थलों की सैर, प्रकृति की सैर और बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम बेस्ट बनाता है। यहां के नजारे बर्फ से फ्री रहते हैं इस दौर में, इस टाइम पर, और आसमान आमतौर पर साफ रहता है। फोटोग्राफी के अगर आप शौकीन हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये वक्त सबसे बेस्ट है। और अगर मैं कहूं कि यहां पर आपको क्योंकि ये वसंत ऋतु है और सेब के बागों सहित सभी बागानों में फूल खिलने लगते हैं जो काफी दिलचस्प और रंगीन होता है, तो आपको ये जो मौसम है इसमें जरूर यहां पर घूमना चाहिए। घूमने का सबसे अच्छा मौसम अगर मैं कहूं तो फोटोग्राफर्स के लिए अप्रैल है। और अगर मैं बात करूं जुलाई से सितंबर जो कि मानसून का वक्त रहता है, तो कुफरी में एक अलग ही रूप सामने आता है। पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, घाटियां ताजगी से भरी नजर आती हैं और हवा बहुत ही साफ और स्वच्छ महसूस होती है। हालांकि लगातार बारिश, कोहरे और फिसलन भरी सड़कें यात्रा और योजनाओं को थोड़ा सा प्रभावित कर देती हैं। कभी कभी लैंडस्लाइड्स और पहाड़ों में रास्ते बंद होने की समस्या जरूर आ सकती है, तो आप अगर इन चीजों से परहेज करना चाहते हैं तो ये मौसम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और ऐसी चीजों से आपको डर नहीं लगता, तो फिर आप ऐसे मौसम में यहां जा सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में शांति और भीड़भाड़ कम आपको नजर आएगी और नजारे खूबसूरत आपको मिलेंगे, खास तौर से बर्फ या फिर पहाड़ों के खूबसूरत नजारे अगर आप देखना चाहते हैं। सर्दियों की बात करूं शरद ऋतु की, तो अक्टूबर और नवंबर ये जो समय है, इस वक्त आप जा सकते हैं। मानसून की तरह कुफरी के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीनों को भी अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन खासतौर से अगर मैं कहूं तो यहां पर इस टाइम पर एक अलग ही आकर्षण होता है। कुफरी में शरद ऋतु बदलते रंगों की वजह से देखने लायक है। कुफरी के आसपास के जंगल शरद ऋतु की प्राकृतिक रंगों से सराबोर हो जाते हैं, हवा बहुत ही ताजी महसूस होती है। और सर्दियों की बात करें जो दिसंबर से फरवरी में होती है, तो फिर सर्दियों के मौसम में कुफरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये बर्फबारी का मौसम है और यहां स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लीजिंग और ताजी बर्फ में खेलने जैसे पारंपरिक बर्फीले अनुभव आप ले सकते हैं। पूरा शहर एक सफेद जादुई दुनिया में बदल जाता है, जिससे ये पहली बार बर्फ का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए खास तौर से एक आकर्षण बन जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सचमुच ऐसी जगहों पर जाना बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, खास लगता है, क्योंकि
सर्दियों में कुफरी जो है वो बहुत जादुई सा हो जाता है। कुरकुरी बर्फ पर चलना, आरामदायक कैफे में गर्माहट का आनंद लेना और बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारों में खो जाना, जिसे आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे और इन्हें देखते हुए आप कभी थकेंगे भी नहीं। तो कोशिश करिए कि जो आपका बेस्ट मौसम हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, उस मौसम में यहाँ पर जाएं। सुहाने मौसम और नजारों के लिए गर्मियों में कुफरी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बेस्ट है ही, क्योंकि अगर आप दिल्ली की गर्मी से थोड़ा सा अपने आप को निजात पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो पहुंच जाइए कुफरी, क्योंकि ये आपको सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडा ठंडा यादगार अनुभव देगा। वेल, अभी तो गीत सुनाती हूँ और उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी कुफरी के बारे में। जुड़े रहिएगा इस सफर में मेरे साथ।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agnivir Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is

0: 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: कुफरी के सैर पर निकले हैं आज आप और हम 11:29 और 49 सेकंड हो चुके हैं और इससे पहले कि सफर का वक्त खत्म हो कुफरी की सैर पूरी तरह से आपको कराना जरूर चाहती हूं मैं। तो वही पहुंचना कैसे है सबसे पहले आप ये जान लें। कुफरी शिमला शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है यानी लगभग आधे घंटे की ड्राइव पर। यहां बस और टैक्सी उपलब्ध है। शिमला सड़क मार्ग से दिल्ली चंडीगढ़ और बाकी शहरों से भारतीय शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। बस सेवा की बात करें तो दिल्ली या चंडीगढ़ से कुफरी के लिए कोई सीधी बस नहीं है। हालांकि आप रामपुर या रिकोंगपेओ के लिए जो कि किन्नौर में है इसके लिए आप बस ढूंढ सकते हैं और रास्ते में कुफरी में उतर सकते हैं। ऑप्शन के तौर पर कहूं तो शिमला के लिए बस ले लीजिए और फिर वहां से स्थानीय परिवहन का इंतजाम करके आप कुफरी जा सकते हैं। ट्रेन से अगर आप जाना चाहें तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है और जहां से आप पहुंचने के बाद टैक्सी भेज सकते हैं या बस ले सकते हैं। इसके अलावा कालका शिमला टॉय ट्रेन का भी आनंद आप ले सकते हैं जो कालका से शुरू होने वाला एक दर्शनीय यूनेस्को सूचीबद्ध मार्ग है और आप इसके जरिए भी आनंद लेते हुए यहां पहुंच सकते हैं। बाय एयर अगर आप जाना चाहें तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहां से शिमला जाने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं और वहां से कुफरी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई ये तो हुआ यहां पहुंचने का तरीका। अब आपको और भी बहुत सारी चीजें बता दूं कि शिमला के पास स्थित कुफरी सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है जो परिवारों जोड़ों एकल यात्रियों के लिए रोमांच और शौकीनों के लिए कई तरह की गतिविधियां प्रदान करता है। सर्दियों में बर्फ के रोमांच से लेकर गर्मियों में शांत वन घूमने तक कुफरी पर्यटन में साल भर सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अगर आप बात करें सर्दियों के मौसम में कुफरी की सबसे बड़ी खासियत बर्फ से जुड़ी गतिविधियां हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच कुफरी बर्फ का स्वर्ग बन जाता है जो पहली बार बर्फ का अनुभव करने वाले पर्यटक हैं उनके लिए आकर्षण है। स्कीइंग स्नोबोर्डिंग स्लेजिंग और बर्फ में खेलना बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां जाकर कर सकते हैं ऐसे मौसम में। अगर मैं बात करूं कुफरी में घुड़सवारी और याक की सवारी सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय अनुभवों में से एक है और ये सवारी आमतौर पर आपको सुरम्य वन मार्गों और महासूर शिखर की ओर ले जाने वाले पहाड़ी रास्तों से होकर ले जाती है। हालांकि ये पर्यटक जो यहां पर पहुंचते हैं उनके बीच एक लोकप्रिय गतिविधि है लेकिन ज्यादा शुल्क से बचने के लिए आप लाइसेंस प्राप्त यहां जो संचालक हैं उनसे आप बात कर सकते हैं यहां उनका चुनाव कर सकते हैं और कीमतों की पहले से आप जानकारी लेकर यहां जा सकते हैं। इसके बावजूद चीड़ के जंगलों में घोड़े पर सवार होकर कुफरी की सैर का अनुभव हिमालय की एक अनूठी झलक पेश करता है तो आपको जरूर इसका अनुभव करना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं कुफरी में ट्रैकिंग की तो भाई ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर के लिए बेहतरीन जगह है ये जो धीमी गति से यात्रा और प्रकृति की खोज का आनंद लेना चाहते हैं उन यात्रियों के लिए जो धीरे धीरे देवदार के जंगलों से घिरा हुआ महासू पीक ग्रीन वैली और आसपास के इलाकों का पैदल चलकर मजा लेना चाहते हैं आनंद लेना चाहते हैं उनको जरूर यहां पर एक बार ट्रैकिंग का अनुभव करना चाहिए और ये रास्ते ताजी पहाड़ी हवा शांत वातावरण प्राकृतिक नजारों जो कि फोटोग्राफी के लिए बहुत ही खास है और अलग अलग तरह के पक्षियों को देखने के लिए बहुत ही शानदार है तो आपको ये अनुभव जरूर करना चाहिए। और यहां पर देखने के लिए क्या क्या है जरूर बताऊंगी लेकिन इस गीत के बाद।

0: चना
1: लो, इटक दाना बीटक दाना दाने ऊपर दाना इटक दाना।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: तो भाई मैं आपको बता रही थी कि कुफरी में घूमना कहाँ कहाँ है और क्या क्या है यहाँ पर करने के लिए। कुफरी फन वर्ल्ड कुफरी के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है, खासकर बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए। ऊंचाई पर स्थित ये पार्क दुनिया के सबसे ऊंचे गो कार्टिंग ट्रैक में से एक है और इसके लिए जाना जाता है। गो कार्टिंग के अलावा ये मनोरंजन पार्क, जोरबिंग और एडवेंचर राइड्स और बाकी ऐसी बहुत सी मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी खास फेमस है, जो कुफरी पर्यटन में एक मजेदार और बहुत ही खास है बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो महासू पीक पर जा सकते हैं, जो कि कुफरी का सबसे ऊंचा स्थान है और यहां इस क्षेत्र के सबसे सुंदर स्थानों में से एक माना जाता है। यहां से बर्फ से ढकी हिमालयी पर्वतमाला, जंगलों और दूर स्थित घाटियों का मनोरम नजारा आप ले सकते हैं। और इस चोटी पर एक छोटा नाग देवता का मंदिर भी है, जो इस स्थल को सांस्कृतिक महत्व देता है और इस वजह से यहां पर भी पर्यटक ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। कई बार देवदार के जंगलों से होते हुए पैदल चढ़ाई कर सकते हैं आप, या फिर टट्टू की सवारी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर सूर्योदय देखना सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है, फोटोग्राफर्स के बीच ही काफी लोकप्रिय है।

0: ग्रीन वैली एक जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। सर्दियों में इसे व्हाइट वैली के तौर पर भी जाना जाता है। शिमला कुफरी मार्ग पर स्थित ग्रीन वैली कुफरी के सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले स्थानों में से एक है। गर्मियों में घाटी चीड़ के पेड़ों और खुली ढलानों से हरी भरी हरियाली से ढकी रहती है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी इसे एक और ही सफेद घाटी का रूप देकर बहुत ही खूबसूरत बना देती है। और अगर मैं बात करूं तो खास तौर से परिवारों या ग्रुप्स में जाने वाले लोगों को शिमला से कुफरी की जो छोटी सी यात्रा है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड्स के ग्रुप्स के साथ या फिर ऐसे किसी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं।
1: मीडियम वेव को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलो हर्ज में हमी आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र बोली रहेका छौं। इसका साथ ही यहां 103 मेगाहर्ज एफएम कंचनजंगा साथ ही न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप में सुनी रहनु भएको छ। श्रोता समय स्टूडियो को घड़ीनुसार 11:40 मिनट भइसकेको छ र अबको समय हो कार्यक्रम नारी संसार को। आज हामी श्रोताहरूलाई कार्यक्रम नारी संसार में राधिका शर्माले स्वरोजगार महिला टीका नेपालसँग लिनुभएको अन्तर्वार्ता सुनाउनेछौं।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश

0: हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
1: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है।
1: सप्रेम नमस्ते जी, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है।
1: जी,
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है।
1: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है, वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
1: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है। और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
1: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
1: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
1: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
1: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई।
0: जी।
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
1: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज

0: हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाँ।
4: हर गोविंद भाई,
5: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
5: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
5: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
5: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी मां तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला,

0: यहीं रहेगी।
1: अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: अरे हर गोविंद क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
3: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
2: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पैर लागू।
1: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई रहा खर्च तो है।
2: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
2: अच्छा राम राम
4: राम राम
2: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल।

0: हरगोविंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
1: बड़ी बहुरिया।
0: हरगोविंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
1: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
0: काहे?
1: मुझे माफ कर दो।
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
0: हरगोविंद भाई,
1: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
0: हरगोविंद भाई, तुम
1: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, रहूंगी, यहीं रहूंगी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
3: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
2: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
4: जी,
2: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
5: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learnt to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts

मनुष्य छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं। क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी है कि गुड़िया विच तकतेनी परने सड़ गए थे कुआरे अख्तेनी, शादी की इच्छा रखने वाली ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार सी बातें भी आई हैं। ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ। और इसका उत्तर उन्होंने दिया है, सोशल मीडिया। जी, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है।

0: इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है, भाई इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंपकर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं। बताइएगा, तब तक सुनिए ये संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले पिछली पहेली जो हमने यूं ही बूझी थी, उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है, तो मैं पहेली बताती नहीं हूं, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहां जितने ज्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहां चिड़िया पंछी भंवरे तितलियां दिखते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि जमीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में, तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरी हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, तो रात को सब अपने बिस्तर पे लेटे लेटे पहेलियां बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहां पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले, जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहां आकर हमें सबसे ज्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं, अरे वाह इतने सारे नाम है भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है। हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहां हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं। उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था। आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आंख खुले और मेरा दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा क्या बात है, एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ, और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों की स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज के तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं, और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है, और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर, किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूं, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज का है, तो हमारी श्रोता लिखती है, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है। जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नजर पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूं, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूं मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं, न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफी की आवाज का मैं था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ घूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ये इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए।

और हमारे देश का नाम है भारत। भारत, भारत, ये अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश मां के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूं और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। बड़ा मजा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

0: Years of a wider regional confrontation. While both sides have since signaled a temporary halt to direct fire, military forces remain on high alert and officials continue to warn that the situation could deteriorate rapidly. Diplomatic efforts are intensifying with international actors pushing to prevent further escalation and preserve the fragile ceasefire framework that has held roughly for 2 months. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya till Thursday. IMD also issued a red alert for heavy rainfall over parts of Karnataka, Kerala and Mahe today. Meanwhile, the weather agency has predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbh and West Rajasthan. In men's cricket, India A has set a target of 278 runs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambola International Stadium in Sri Lanka. The men in blue scored 277 runs for the loss of 6 wickets in 50 overs for India. Ruthuraj Gaikwad's century, coupled with a 150-run partnership with Tilak Verma, helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Tambola, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
3: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने यह उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
6: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
2: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: मीडियम वेब को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलो हर्समा हामी आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र बोलिरहेका छौं। इसका साथ ही यहां हामीलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंघा साथ ही न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप में सुनी रहनु भएको छ। श्रोता, समय स्टूडियो को घड़ी अनुसार 2:30 भइसकेको छ र अबको समय हो लिम्बु लोकगीत को। आज हामी श्रोताहरूलाई लिम्बु लोकगीत सुन्ने क्रम में रूपलाल लिम्बु को स्वर में सजिएको लिम्बु लोकगीतहरू सुनाउन गइरहेका छौं। श्रोता, मनोरंजन लिनुहोला यी लिम्बु लोकगीतहरूबाट।

0: यी संगठनहरूलाई फितना अल हिन्दुस्तान बताएर दुष्प्रचार फैलाउने आरोप पनि लगाएको छ। राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको एक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भारतका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत पर्वत नेनी हरिशले इस्लामाबादले भारतमाथि दोष थोप्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। भारतले इस्लामाबादको सीमापार सैन्य अभियानको निन्दा गरेको छ अनि अफगानिस्तानमा हवाई हमलाको कारण भएको मृत्युको लागि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
1: पाकिस्तानद्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
2: ब्लेमिंग नेबर्स फॉर इट्स ओन फेलियर्स इज एन ओल्ड पाकिस्तानी हैबिट।
0: अन्तर्राष्ट्रिय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेशको इन्दौरमा शुरू भएको छ। यस सम्मेलनमा 21 देशहरूका कृषि मन्त्री, वरिष्ठ अधिकारी र विशेषज्ञ सहभागी छन्। यसमा ब्राजिल, इण्डोनेशिया, चीन, इरान, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब अमीरात र अन्य सदस्य देशका प्रतिनिधिहरूले भाग लिइरहेका छन्। आजका सत्रहरूमा खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती र कृषि नवाचार सम्बन्धी छलफलले टिकाउ कृषि खाद्य प्रणालीको निर्माण गर्न मदद गर्नेछ। कृषि मन्त्रीहरू बीच एक विशेष संवाद 12 जूनमा आयोजित गरिनेछ। यसले साना किसान, महिला र युवाहरूको माध्यमले खाद्य सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठक 13 जूनमा हुनेछ। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले रिमोट बटन दबाएर लद्दाखको मिनी मर्गमा जोजी

0: सुरुङको पूर्वी प्रवेशद्वार नजिक विस्फोट गराउनुभयो, जसले कश्मीरको पाल्टल अनि लद्दाखको मिनीमर्कको दुवै छेउ आसपासमा जोड़िएको छ। यस अवसरमा जम्मू कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अनि मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। जुजिला सुरुङले आज अन्तिम सफलताका साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ। यसका साथै कश्मीर उपत्यका अनि लद्दाख बीच वर्षभरि कनेक्टिभिटीको दशकौं पुरानो सपना अब साकार हुने भएको छ। यस परियोजनालाई जम्मू कश्मीर अनि लद्दाख बीच सम्पर्क सुनिश्चित गर्नको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ, कारण हालैको राजमार्ग जाड़ोको मौसममा भारी हिमपातको कारण अनि खराब मौसमको स्थितिमा लामो समयसम्म बन्द रहन्छ। नागरिकहरूको आवागमनमा सुधार गर्नुका साथै यस सुरुङले माल ढुलाई बढ़ाउने, पर्यटनलाई बढ़ावा दिने र जाड़ोको मौसममा लामो समयसम्म बन्द रहने दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँच सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ ताजा समाचार। जान्नका लागि श्रोताहरूले सोशल मीडिया ह्याण्डल एक्स एट एआईआर न्यूज कर्सियङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
1: आजकल भारत के गांव गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: यो आकाशवाणी हो। केन्द्रीय स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्री जगत प्रकाश नड्डाले आज नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षित मातृत्व अभियानको 10 वर्ष मनाउन राष्ट्रव्यापी उत्सवको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यस अभियानको उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था र मातृत्व सुनिश्चित गर्नु हो।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालयले ह्याम्प्टन स्काई रियल्टी लिमिटेडसित सम्बन्धित धनशोधन मामिलामा पंजाब, उत्तर प्रदेश र दिल्ली एनसीआरका 6 स्थानहरूमा छापामारी गरिरहेको छ। यसमा पंजाबको लुधियाना र जालन्धर, उत्तर प्रदेशको बरेली र दिल्ली एनसीआर क्षेत्रहरू सामेल छन्। निदेशालय अनुसार तलाशी अभियानमा संलग्न परिसरहरूमा ह्याम्प्टन स्काई रियल्टी लिमिटेडसित जुड़ेका व्यक्तिहरू र संस्थाहरूको आवासीय र व्यावसायिक कार्यालय दुवै सामेल छन्। यो मामिला आम आदमी पार्टीका नेता र पंजाबका मन्त्री संजीव अरोरासित सम्बन्धित छ। जम्मू कश्मीरमा अमरनाथ यात्रा 2026 को सहज र सफल सञ्चालनको व्यवस्थाको शीर्ष अधिकारीहरूले समीक्षा गरेका छन्। जम्मूका डिभिजनल कमिश्नर रमेश कुमार र जम्मू जोनका पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टुटीले सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा गर्न हिजो रामबन जिल्लाको भ्रमण गर्नुभयो। पश्चिम एशियामा इरान र इजरायल बीच तनाव कम भएको छ, प्रत्यक्ष झडपमा पनि कमी आएको छ। यसैबीच दुवै पक्षबीच अस्थिरता कायमै छ। इजरायलले बेरूतमा हिजबुल्लाहको ठेगानाहरूलाई लक्षित गरेपछि दुवै देशबीच तनाव

0: भन्दा बढी प्रभावकारी साबित भएको छ।
1: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पश्चिम एशियामा बढ़दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। श्री गुटेरेसले सबै सरोकारवालाहरूलाई हमला रोक्न र संयम अपनाउन अपील गर्नुभयो। वहाँले लेबनान, इरान र गाजामा युद्ध विराम पालना गर्न सबै पक्षलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। आज झारखण्ड सहित देशभरि महान स्वतन्त्रता सेनानी तथा धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डाको पुण्यतिथिमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन्दैछ। यस अवसरमा झारखण्डका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री अनि सबै गणमान्य व्यक्तिहरूले राँची स्थित कोकर समाधि स्थलमा भगवान बिरसा मुण्डालाई पुष्पाञ्जली अर्पित गर्नुभयो। यसबारे सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहले भगवान बिरसा मुण्डाको पुण्यतिथिको अवसरमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। पुरूष क्रिकेटमा आज भारत ए अनि श्रीलंका ए बीच वन डे त्रिकोणीय श्रृंखलाको पहिलो मुकाबिलामा भारत ए टीमले श्रीलंका ए विरूद्ध 50 ओभरमा 277 रन बनाएको छ। यसअघि भारत ए को कप्तान तिलक वर्माले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो। यो समाचार युट्युबमा @AIR कर्सियङ मार्फत पनि श्रोताहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारले विगत 12 वर्षमा युवा, महिला र किसानहरूलाई सशक्त बनाएको बताउनु भएको छ। भारतले राष्ट्रसंघमा पाकिस्तानलाई घृणा फैलाउने फ्याक्ट्री बताएको छ। इन्दौरमा ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू भएको छ। 21 देशका प्रतिनिधिहरूले भाग लिइरहेका छन्। जोजिला सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ जसले कश्मीर र लद्दाख बीचको सबै मौसममा सम्पर्क

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। क्रिकेट में दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 65 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान

कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, जब हम आदतें बदलते हैं तुम शर्तें बदल देते हो। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां ये समय है मनभावन प्रोग्राम का। मनभावन वही प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पसंद के गीत आपको सुनवाते हैं अब से लेकर 4 बजे तक, और इन गीतों की फरमाइश या रिक्वेस्ट आप हमें लिखकर भेजते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldaiadelhi@gmail.com। तो पहला गाना मैं आपको सुनवा रही हूं बहुत ही खूबसूरत, 3 देवियां फिल्म से किशोरदा की आवाज में।

जी हम तो बिल्कुल हकीकत हैं और इसीलिए आपके मैसेजेस यहां शामिल कर रहे हैं और आज आप ही के पसंद के गाने आपको सुनवाने वाले हैं। पहला मैसेज हमें मिलता है संतोष खटसे का। आप गैंगस्टर फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं विनोद खटसे के साथ। अगला मैसेज है तुलसी मस्कीन का और आपके साथ है वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधा।

ईशान खुराना भी आपके साथ हैं। प्रोग्राम आपको ये वाला पसंद आता है ऐसा आप कहते हैं। अंकित कांगड़ा हरियाणा से हमें मैसेज भेजते हैं, राम राम जी लिखकर कहते हैं कि दो बदन फिल्म से एक गाना आपको सुनवा दिया जाए। मोनी कांगड़ा, अंकित, प्रिंस बोट, सीताराम और साहिल कांगड़ा आपके साथ हैं। स्वरूप आनंद सरजल प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बहुत सारे इमोजीज के साथ आपने हमारा स्वागत किया है, जिसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहती हूं। छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ हैं और जिंदगी और तूफान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं मुकेश साहब की आवाज में, और स्वरूप आनंद सरजल आपके साथ जी आपने ही हमें संदेश भेजा है। और मेहर अरोड़ा का भी मैसेज हमें मिलता है, मेहर अरोड़ा क्या कहते हैं जान लेते हैं। आप श्री गंगानगर राजस्थान से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ममता अरोड़ा कीर्ति भूमिका अरोड़ा के साथ, और चरस फिल्म से आपने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। विजय सुरलकर का भी मैसेज हमें मिलता है, झुक गया आसमान से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, रतन माला और गौरी सुरलकर आपके साथ हैं। अगला मैसेज हमें जगन्नाथ पटेल का मिला है और आप खंडवा से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कमला अंतिम, जगन्नाथ पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल आपके साथ हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अगला गाना है वो कौन सी फिल्म का है, वो कौन सी फिल्म है ये, जी हां वो कौन थी ये फिल्म है, और आप चंडीगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते हैं, बिमला और सतीश अनेजा। तो चलिए सुनते हैं आशा जी की आवाज में ये गाना।

जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट

0: घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: स्वागत एक बार फिर आप सभी का मन भावन में। एक बार फिर से सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूं, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldairdelhi@gmail.com। आपकी पसंद के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं और अगला जो गाना है वो किसकी पसंद का होगा उसके लिए हमें थोड़ी सी ईमेल्स, थोड़े से नाम शामिल करने होंगे। तो अगला मैसेज हमें मिला है रवि कुमार राहुल का, और आप हीरा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं हरियाणा से। रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल आपके साथ हैं। और अगला मैसेज आता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और आपके परिवार के सदस्य हैं और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपका मैसेज गायब हो गया है। हालांकि अब्बासी साहब आपने इतनी सारी ईमेल भेजी हैं, मैसेज गायब हो गया भी गायब नहीं होता है ना। जो जानते हैं हमने कितनी बार भेजी हैं वो ताल्लुक रख पा रहे होंगे मेरी बात से। तो खैर, हरजिंदर सिंह भाटिया ने हमें ईमेल लिख भेजी है, आपके साथ हैं एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया और आप जमशेदपुर से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। दो आंखें 12 हाथ से आप एक गाना सुनना चाहते हैं आज। अनिल मोहन का मैसेज हमें मिलता है तीसरी कसम से, आप मुल्तानी डांडा से अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं। उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक आपके साथ हैं। अगला मैसेज अनंता वाढे का हमें मिला है और गैम्बलर फिल्म से एक बहुत ही सुंदर गाना आप सुनना चाहते हैं। आपके साथ है रामेश्वर वाढे, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वाढे परिवार, आप सब इस गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजते हैं। और अगला मैसेज हम देखते हैं किसका है। फैज अहमद कतरी भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम अपनी पसंद का गाना आपको सुनवा सकते हैं। आपके साथ शाकिर, मुलाजी, साबिर और रफीक भी हैं और आप हुबली से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। क्या बात है, देश के कोने कोने से जब मैसेजेस आते हैं ना तो लगता है कि बस सभी की पसंद के गाने सुनवा दिए जाएं। तो चलिए ऐसे देखते हैं कि अगला गाना किसकी पसंद का है जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपसे बस कुछ ही सेकंड्स दूर है वो गाना। वक्त फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है और धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना आप सबके लिए, आप ही के अपने, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी, तो अगले मैसेजेस जो पहुंच रहे हैं हमारे पास, वो पूनम गगनेजा का अगला मैसेज आया है। आपके साथ हैं सुरेश, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित भी, और आप जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ हैं। अगला ईमेल हमारे पास अल्तमश खत्री का आया है और आप सुनना चाहते हैं दर्द फिल्म से एक गाना। आपके साथ अक्रम फरजाना और शबनम है। किशन वंजनी भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपके साथ हैं नीलम, स्वाति, कीशु। आप रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि हम अपनी पसंद का कोई भी गाना आपको सुनवा दें तो आपको अच्छा लगेगा। उत्तम सिंह जंगेल का मैसेज हमें मिलता है, साजन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ हैं मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयु जंगेल और नंदनी जंगेल। और इसी के साथ सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल का भी नाम आपने शामिल किए हैं। और राजा और रंग फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंचती है जुम्मा नगर खंडवा से, और आपके साथ है अल्तमश, सबीना, मुदस्सिर, फिरदौस और हसन लाला। संदीप मक्कड़ का भी मैसेज हमें मिलता है और संदीप फिल्म नील कमल से गाना सुनना चाहते हैं, ज्योति मन्नत, भरत और कमल मक्कड़ के साथ। साहनी, आप पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अमोल मानकर भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, रास्ते का पत्थर फिल्म से आप उसका टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। और बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार का भी मैसेज हमें मिला है। दुर्गा सैनी प्रोग्राम सुन रही है। आपके साथ खंडवा से हैं अनीता सैनी, गौरव, ईशान, कार्तिक सैनी। इंतकाम फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। ताज मोहम्मद का मैसेज हमें मिलता है गुलाम साबिर राही मेरा जहां के साथ, आप हरिद्वार से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। शमशूल कमर राही गंज डुंडवारा से खानदान

0: खान फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान। भूषण खेड़ा भी हैं मैसेज भेजने वालों में। आप भी राज और रंग से गाना सुनना चाहते हैं, फजिल का पंजाब से। आपके साथ है विशु खेड़ा, विशाल लाडी और फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये है गाने के बोल। वैसे मैं आपको बता दूं कि पुकार फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है मेरठ से दिग्दर्शन गौर और कविता जी की। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट आज पूरी कर देते हैं और ये गाना आपकी पसंद का सुनवाते हैं सभी सुनने वालों को आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: देखो हाँ माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी

अगला मैसेज हमें मनभावन में मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब रियाज मोहम्मद कैफ अंसारी अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का और बोधराज खोरवाल भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं। कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ धनवान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। ढेर सारी ईमेल्स आपने हमें भेज दी हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरा पेज आप ही की ईमेल से जो है ना वो आप मुझे भरा हुआ लग रहा है। एचआर पांड्या का भी मैसेज हमें मिलता है जाने अनजाने फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। असम से आप हमें सुन रहे हैं हरेन पांड्या नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या क्या बात है। और अमोल मानकर का मैसेज मिलता है रास्ते का पत्थर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। शोभाताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार आपके साथ हैं और सहदेव दामोदर शशिकला और सुमित कुमार भी आपके साथ ही हैं। मोहम्मद यूनिस खत्री प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं सच्चा और झूठा फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं आपके साथ हैं। अयूब यूसुफ और मोहम्मद सादिक खत्री भी आप खंडवा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और किशन वंजनी का भी संदेश हमें मिलता है आप दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से अजीब दास्तां है ये बहुत ही फेमस गाना है इसे सुनना चाहते हैं। और आपके साथ है सुमन महाजन आप इन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं गाना क्या बात है। और इसके बाद सुनील पाठक भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं आपके साथ है कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक दोस्ती फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। आफताब अंसारी का भी मैसेज हमें मिला है और मैसेज भेजने वालों में सुनील पाठक का नाम है गणेश सुतर का भी मैसेज आया है। आनंद फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं चेतन सुतार सारिका सुतार आपके साथ हैं। कोल्हापुर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं राफिक भाई पवार का भी मैसेज आया है एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं आपके साथ है बेनजीर कौसर मोहम्मद साकी पवार अलमाज बानो पवार बेबी आयत फातिमा और मोहम्मद हसनैन पवार। अगला मैसेज हमें मिलता है किसका ये मैं आपको बताती हूं जय का मैसेज आता है हमें जय राम खोरवाल सचिन अमन खोरवाल दीपांशु खोरवाल 1942 लव स्टोरी से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है लेकिन मैं कौन सा गाना सुनवा रही हूं ये आपको बता देती हूं। इज्जत फिल्म से इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास दिल्ली से आई है और उग्रसेन शकुंतला यादव और गरिमा इस गाने को सुनना चाहते हैं। लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गाना आप सबके लिए मन

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ढेर सारे मैसेजेस आपके मिल रहे हैं हमें मनभावन में, जिसे आप सुन रहे हैं आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अरविंद कुमार का मैसेज हमें मिलता है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आलिम पटेल सुन रहे हैं प्रोग्राम और पर्वत फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल भी। कल्पना झा का मैसेज हमें मिलता है, फिर वही शाम वही गम, ये गीत आप सुनना चाहते हैं तलत साहब की आवाज में। आपके साथ है मानव, मयंक और आप गुजरात से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुशांत प्रिया झा का मैसेज आया है, छाया फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी आपके साथ हैं, कीर्ति नगर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुरेंद्र संधू का भी मैसेज हमें मिला है और आपके साथ है अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा संधू, प्रीतिश और मैक्स। और आप कहते हैं कि आप हमारी ही पसंद का गाना सुन लेंगे, उसी में बहुत खुशी हो जाती है। क्या बात है। उग्रसेन यादव प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी पसंद का गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं। और अगला मैसेज शीशपाल वर्धन का हमें मिलता है, दिल के टुकड़े दो ये गाना आप सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज अनूप कौर का आता है, आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं सरोज बंसल के साथ गुरुग्राम से। इशाक मोहम्मद भी हैं सुनने वालों में और आपके साथ है खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा और आपके परिवार के सभी सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। भव्या मैथिली हैं, तीसरी कसम से गाना सुनना चाहती हैं। आपके साथ है लड्डू कुमारी और टुक टुक भी। नजफगढ़ से आप प्रोग्राम सुन रही हैं, इसे पसंद कर रही हैं। मल्होत्रा टीडी आपका मैसेज आता है, आपके साथ है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सिंह। आप ही की पसंद का गीत है अगला, जिसकी रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। मैंने प्यार किया से ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी इसी फिल्म से गाने की, भारत भूषण साहब हैं, आप भी इसी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ बेंगलुरु से। तो आपकी पसंद का गाना पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: सुरेश खोबड़खेड़े, सुरेश नारंग, नीटू मल्होत्रा, संजय साहू पोटिया कला से मैसेज भेजते हैं, ताज मोहम्मद, नवी हसन अब्बासी, सुरेंद्र संधू, बबलेश पवार, पूनम गगनेजा, उत्तम सिंह जंघेल, शेख मूसा भाईजान, जॉन डिकोस्ट्रो, पर्ल विलिस, संदीप मक्कड़ और मन्नत भरत मक्कड़, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ ज्योति मक्कड़ भी है और रामकुमार रेवार, अत्तर सिंह करदम, शीशपाल वर्धन, मास्टर खिल्लू परवेज, सुरेश नारंग, इशाक मोहम्मद, उदय भानपाल, मोहम्मद वकार, अभिजीत ग्वांकर, पंडू चंदन, सुरेश राठौड़, अशोक डाले, रिजवान, आप सबके लिए ये गाना जाने से पहले।
1: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है,

जय हिंद फौजी दोस्तों, सौर्य गाथा में आज आप सबों के साथ मैं हूं आप सबों का दोस्त दयानंद। दोस्तों आज एक प्रमुख भारतीय फिल्मी अभिनेत्री और मॉडल अमीषा पटेल और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर की बेटी अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्मदिन है। दोनों अभिनेत्रियों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हिंदी फिल्म संगीत सुनने के साथ साथ चर्चा करेंगे क्रमशः उन अभिनेत्रियों के जीवन करियर के बारे में। इससे पहले कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुने सन 2000 में की ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है से एक बहुत ही रोमांटिक गीत। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और मधुर स्वर दिया है बाबुल सुप्रियो ने।

Can you feel it? Yeah. Then let's go for it.

फौजी दोस्तों, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पैदा हुई अमीषा पटेल का जन्म आज ही के दिन सन 1976 को मुंबई महाराष्ट्र के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता अमीश पटेल और माता आशा पटेल हैं। अमीषा पटेल एक प्रसिद्ध वकील और राजनेता बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं। उनके जन्म का नाम उनके पिता और माता के नाम से संयुक्त कर अमीषा पटेल रखा गया था। महजपाल 5 साल की उम्र में ही अमीषा एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी बन गई थी। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए अगला गीत सुनते हैं। ध्रुव योगी और समीर की गीत रचना फिल्म भूल भुलैया 3 से गायक कलाकार पिटबुल, दिलजीत दोसांज और नीरज सिधर के स्वरों में को संगीतबद्ध किया है तनिष्क बागची और प्रीतम ने।

दोस्तों, अमीषा पटेल ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। इसके बाद वे अमेरिका गई, जहां उन्होंने टफ्टस यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इसी दौरान सन 1992-1993 की हेड गर्ल रही हैं। अमीषा पटेल का करियर स्नातक करने के बाद खंडवाला सिक्योरिटीज

लिमिटेड में एक आर्थिक विश्लेषक के रूप में शुरू हुआ था। बाद में उसे मॉर्गन स्टैनली से एक प्रस्ताव मिला, लेकिन अमीषा ने उसे ठुकरा दिया। बहरहाल अगला गीत आइए सुनते हैं। गीतकार आनंद बख्शी के शब्दों को उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में युगल आवाज दे रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म का नाम है गदर एक प्रेम कथा।

0: भारत लौटने के बाद अमीषा सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई और नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। उसी दौरान अमीषा पटेल ने कई व्यावसायिक अभियानों में दिखाई जाने वाली मॉडलिंग का रुख भी किया। पटेल ने बजाज सेवाश्रम, फेयर एंड लवली, कैडबरी, जय, लाइफेम, लक्स और कई और प्रसिद्ध भारतीय ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की। वर्ष 2000 में फिल्म कहोना प्यार है से शानदार शुरुआत की और गदर एक प्रेम कथा व गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जानी गई। आगे चर्चा करेंगे अभिनेत्री सोनम कपूर के बारे में। इससे पहले आइए सुने उदित नारायण, शान, कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में फिल्म हमराज का गीत। हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं सुधाकर शर्मा ने।
1: प्यार कर

फौजी दोस्तों, अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्म आज ही के दिन सन 1985 को चेंबूर मुंबई में हुआ था। उनके पिता हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता अनिल कपूर और उनकी माता सुनीता कपूर हैं। कपूर खानदान से में अन्य सभी की तरह सोनम ने फिल्मी करियर को चुना और आज वे अन्य अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर भी दे रही हैं। सोनम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर स्कूल जुहू से पूरी की और यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर से थिएटर और कला की पढ़ाई पूरी की। सोनम कपूर एक बॉलीवुड अभिनेता की बेटी थी, लिहाजा उन पर भी ग्लैमर दुनिया का प्रभाव पड़ना लाजमी था, परंतु उनकी मां चाहती थी कि उनकी बेटी सोनम नॉर्मल रहे, इसलिए उन्होंने अपने कई प्रयासों से छोटी सी सोनम पर उस मायावी जीवन का प्रभाव पड़ने नहीं दिया। बहरहाल अगला गीत आइए सुने फिल्म रांझना से। इरशाद कामिल की इस गीत रचना को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने। आवाजें दे रहे हैं जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और पूजा दिव्यनाथ।

दोस्तों, सोनम ने अपना करियर एक सहायक निदेशक के रूप में रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक में काम किया था, लेकिन उन्हें अभिनय में बड़ा ब्रेक दिया संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म सांवरिया में। सोनम पहली फिल्म से सबको आकर्षित करने में कामयाब हो गई। इस फिल्म के लिए सोनम को बेस्ट एक्टर डेब्यू फीमेल के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया। इसके बाद उन्होंने कई हिन्दी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी की। साल 2013 में उनके जीवन की खूबसूरत मोड़ बनी। इसी के साथ ही आज का सौरेगाथा यहीं समाप्त होता है। हमारी आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए

हिंगेचु की सुंगलु थंगपो सेंबना जा तालिंगेचु ताते नेता दीनश्या भूम पोचचु की डुबटे लग्यु की करला सेंबना ताते नेता दीनश्या भूम पोचचु की या याना भूम पोचचु की छो खमी हुले बचेरु रंग की तेन ठुप येपे की लग्यु नाचा की थोजिन पड़ाई किम नाशी यो तायमची रंगी मिचे कादा जवे की तेनलो चिंडी फ्याती की यो फ्या जम्बुली यो नशरा मिंगतम खे पोया जो ये पोई बुम बच लखे देम ई राधा यमची रंगी जमी थमचे की गे भक्ति की यो फ्या को खेम्बे तीजा नचे की यो खन ई बचेरु प्याशे लगती की नो ते कंपोंग यन लो फा बचेना माछु पलखे कहीं यंग में पोई तेचे गेमा इम्बाचेना भूम पच चूल खिम नाशी के यो प्यासे मेम्बो रंगी तेन ठुपसे लापके मिथप खेम्बे खिमे की सूर्जी नाशा देशे था रंगी पच फूजी के लक्ता क्याप्से मेम्बो रंगी तेन ठुप लापखेन्दे खोंकी प्या मिथपी तेजा तातो सीजी के हूँ लेता बचेरु याना छोंग के हूँ लेता बचेरु मेंबा पैसा पो खतम जोवी के हूँ इंबचेरु भूमचु के रंगी मिंगतम जो ये पोई साने लारी नशा तिची तातो या पोता भूमि पार नशा एवा प्याके ये खेम्बे भूमचु के शियन लोबजा प्या माथोपो तेजा गाची डेजो गादे दी नशा भूम पचचु लया पोता डेंडा कमी के होले इम बचेरु निरिंग में पपिया तिकी वहां छाचु थपजिन ये पोई भूम चुकी राथे प्याचु पो याना जेन लते मंगो पपिया तिकी साचु पो डेजो गादे नशा भूम देम के पो एखेंबे काकी रंगदेन टूप ये पोता जेन लो मिक्ति जंगपो तेन ये पो नाशाले केपो येपी नाशाले मिला चिकनी की मिछी लग्यु करलंगा फिशे ही तंगपो सोनम छोड़े डेजोंगपो खो लो निशु चादी लेप येपो शर डेजो गातो ना देखे ही खो टेस बोट सिकिम खिम नशा याना खिम ना जोखे चॉकलेट की दाकू याना जब नाखे खो ही खोंग की गादे की पंखा ले जंगदर नादी की थर खे पोले डेजो नश्याओ दिकी रंगी छोंगो चुको इं छोंगो तंगपो चुकुई की कप लश्या खिमी सुम नाशले गोचु तिजा धातो खोंग की रंगी गाओ नश्या भूम चुथंबालो यो फिन ये पो इं खोंग की राधा न्यमची ये मिला चुई की खासो जिन ये पो इं दिले खोंग की रंगी जोले दिलो रंगी गादे चुकुना माइम बोप्यातिकी गेखप की गादे जेन था पेई साते रंगी छोंगडल लेप ये पोई तातो खोंग की जोले दिप्यातिकी याना खोंग की जोले निशु चादु ये पोई दी डेजों पो थमचे की गासु की तिकी लाले नाजी ये पोई देर अप्यातिकी प्रिया दाहल लप्तिकिया खों लो निशु सागे नुब डेजो नमची की इं खों निशु याना चिलो नीतों चूरुप लाई नशा गोचु गिये पे की ब्यूटीफुल अर्थ लाखें की जोले पो इं खों की लेजी दी गाउ नशा क्या इले भूम पोचोचु की याना भूम पोचोचु जोम्दे की राजी की जेचा याना उदी नशा धुगजे लाले माफियो फ्याति की जोवी की छाखा चो जोशे इं खोंकी जो ये पी की छाखा उदी की जंगदर्दी याना उदी की जंग

ता लोकती रहा लेंगे चो इंगें चेलो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की कर लिशे ई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाप्ती की ग्यागर गेखप की सीले कुश्यप नरेंद्र मोदी की छिलो नीतो निशु चाजी लई दौ निपी की छी चुसुम निंची गचु येपी की छर्सी चिकी छर्सी दी गाउ नश्या खिमी करोर चिक लो लो तापी नश्या पा थोपी की थेन्दा लो खिमी की घुंग तेन लो सोलर पैनल याना निमी की ठीले पावी की लो के छुपी की थेन्दा लो गचुक ई दिले दाउरी नश्या यूनिट सुमग्या साते लो खे तप मांगू पोया जो ये पोई छर्जी दे गचु गोपी मिक्यूल चौधेरा जाछा प्यांगी की ठे नशा छिखे चुकी लोखे तप माछु पे केंगी प्यातिकी नक्सु नशा लू माछु लप्तिकी खोंगी लोखे न्युंगटा जोवी की थेन्दा लो दाउरी नशा यूनिट सुमग्यारी खे तप मांगू पो जो ये पो इं अधि रोरम की थेन्दा लो खिमी की कोंग तेन लो निमी ठेले लो पावी की थेन्दा लो सोलर चुकफिम्बी की यो प्याशे मिसे चुकी छर्जी दी की थोले लोमी या नशा लामी यो पा थपतो इं दी मिछे लोखे न्युंगटा या थेन छुतो इं दिले खे छिशु दी छर्जी दी प्याते की खरियो सुंक्यो प्या थेंजी ये गेखाप की निपो चुलो निर्सुंग प्या माउंग पी तिछे लो लाले प्या छु पी की मिग्युल जाक्ति की छर्जी दी गचुक इं ता छर्जी दी ले यू तिकी फेन्तो खान ये सिशुवा चेना थांगपो दी की मिसे चुई लोखे दिलो न्युंगटा जो छुशे इं खेसी लो की लाले मांगदी की यूनिट सुमग्या लाक्ति की युवा चेना खे या माटा तप गोपो थुक्तुबे तीजा केसी निमी की ठेले लो पावचेना गजी की लोखे या न्युंगटा थेन छुशे इं दिले ठुलचे लाले प्याशे या जम ओदी की न्यन या न्युंगटा थेन लो के लाले ले युती की मी केपा की याना मी लो भर्चे चो थेन ये पो इं दी इंजा केसी सोलर की थोले लो चु लाले फ्यावाचेना दी देमी की न्यन्या न्युंगटा थेंचे इं दी मिछे दिले खरियो या चाटा सुंक्योप थेंचु तो इं दिले मिमा चु की पल्जर सुंक्योप याना दोसा न्युंगटा नशारा यो चु या टुपचु तो इं माजी जुंग की छर्जी दी की

0: Talamsan suci tuk dungbale gesa dili le gyutiki taringini chi hindi kele semana she yi thuji chi.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Lavleen Nigam. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्ट्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। साथै श्रोताले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघाको 103 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, समय स्टुडियोको घड़ीमा 6:05 भइरहेको छ र अब प्रस्तुत छ दैनिक कार्यक्रम

0: 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाई।
2: देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
2: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक

0: बने, 1300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण नव निर्माण हो रहा है। 1300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन

0: चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन तो और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं। अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार के नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

0: कसै सँग यौन सम्पर्क नराख्नुहोस्।
1: याद राख्नुहोस्, सधैं कन्डमको प्रयोग गर्नुहोस्।
0: अधिक जानकारीको लागि टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1097 मा कल गर्नुहोस्।
1: सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी गान्तोकद्वारा जनहितमा जारी।
2: जो पुराने अंदाज में पेश कर रहा हूं, ठुमरी दादरा हमारे संगीत का एक बहुत खास अंग है। यानी जिस तरह ग्रामर होती है, लिटरेचर है और फिर पोएट्री है, तो ये शायरी है, कविता है, जिसे ठुमरी कहा जाता है। और ये हमारे खास मेरे वालिद उस्ताद हाफिज अली खान साहब, उनको गाने का शौक था, दरपत गाते थे, ख्याल भी और ठुमरी भी सरोद जैसे साज के ऊपर कैसे बजती है, यानी सरोद कैसे गाता है, एक अंदाज है। सदाएं सब बुजुर्गों की हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पेश है ठुमरी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहां ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
4: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कम्प्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation.

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
2: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
1: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
2: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप। और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
1: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
2: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी, तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। तो ये सातवा है जो उनकी मुख्य जांचें होती है, जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवा है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और टीडी वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवा है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये नौ प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं, उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
2: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं, उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और A&M बहनें हैं और आशा बहनें प्रेग्नेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
1: बिल्कुल।
2: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
2: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब 5th ANC, 5वां अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई, तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके लॉन्च किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 + 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त, सारा हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स। और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई, इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो?
2: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है
1: जी,
2: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटर्नल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले दो दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइफ बर्थ्स था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइफ बर्थ्स 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते हैं, उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
1: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांव में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
2: आशा वर्कर्स है ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहां पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है।
1: जी।
2: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है, तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलो अप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनता है, हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है, तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है, तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।
1: बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

लो मैं तज कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे खुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।